0: अजीब है ना, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब पीछे छूट जाने का डर इतना बड़ा हो जाता है कि हमें ये दिखाई भी नहीं देता कि हम खुद कितनी दूर आ चुके हैं। कल तक जिसे पाने के लिए पूरी जान झोंक दी थी, आज वो उपलब्धि छोटी लगने लगती है। शायद तरक्की की यही पहचान है। आज भारतीय बैडमिंटन ठीक उसी मुकाम पर खड़ा है। 2009 में जब भारत में आयोजन हुआ था प्रतिष्ठित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का, तो 19 वर्षीय साइना नेहवाल पदक के लिए भारत की एकमात्र उम्मीद थी, वो भी दावेदारों की पहली कतार में नहीं थी। प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद की कहानियां बीते कल के किस्से लगते थे, लेकिन आज 2026 में जब ये कारवां लौट कर भारत आया है तो उम्मीदवारों की एक लंबी श्रृंखला है। इसीलिए तो इस टूर्नामेंट के पहले दिन सोमवार होने के बावजूद अच्छी खासी संख्या में बैडमिंटन प्रेमी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे। और फिर कोर्ट पर जो नजारा देखने को मिला वो दर्शकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं था। भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने किया एक ऐसा उलटफेर जिसे देख पूरा विश्व चौंक गया और भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे। 21 वर्षीय आयुष ने एक कश्मकश भरे मुकाबले में रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन चीन के शी यू की को मात दी। आयुष का मैच पॉइंट स्कोर करते ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मानो जोश का एक विस्फोट हुआ। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। फरवरी 2025 में 19 वर्ष की आयु में पहली बार आयुष शेट्टी का सामना शियुकी से हुआ था इंडोनेशिया ओपन में, और उस टूर्नामेंट में भी आयुष ने शियुकी को एक कड़ी चुनौती दी थी लेकिन उनको हरा नहीं सके थे। लेकिन इस बार अपनी गलतियों से सीख पूरी तैयारी के साथ आए थे आयुष, ऐसा उन्होंने कहा।
1: Today, the last time we played, I think he outplayed me on all aspects of the game. But I think today I was super prepared.
0: Match के दौरान आयुष को चोट भी लगी, उंगली से खून भी बहने लगा। जब कोर्ट साइड डॉक्टर को उन्होंने बुलाया तो फैंस चिंतित हुए, लेकिन आयुष ने मैच के बाद इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी चोट गंभीर नहीं थी।
1: I think I was bleeding on my finger, so I had to go medical. I think nothing serious.
0: आयुष के हर स्मैश, हर ड्रॉप शॉट, हर पॉइंट जीतने पर गड़गड़ाती हुई तालियों से जब स्टेडियम गूंजता तो उससे उन्हें एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती।
1: The crowd was really, you know, behind me and it was giving me the energy. I was a bit tired, but I think the crowd cheering like that, I think gave me a lot of energy.
0: ऐसा ही कुछ पुरुषों के डबल्स वर्ग में अपने जोड़ीदार हरिहरन अमसा करुणन के साथ पहला मुकाबला जीतने पर एम अर्जुन ने भी कहा।
2: बहुत अच्छा था, कोर्ट के अंदर जाने से पहले वी डिडंट नो, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना क्राउड आएगा। हम लोग का नाम अनाउंस करने के बाद क्राउड चिल्लाना शुरू किया, देन बूस्टेड अस, हम लोग को स्पेशली व्हेन द क्राउड पीछे है तो हम लोग को बहुत एनर्जी और वो बूस्ट अप मिलता है हर एक पॉइंट के बाद। अगर पॉइंट गया तो भी दैट चीयर एक्चुअली हेल्प्स अस, एंड देन वो फर्स्ट विन मिलने के बाद आई मीन बोथ ऑफ अस बहुत खुश हूं। होपफुली दे कीप कमिंग इन फॉर द नेक्स्ट राउंड्स एज़ वेल।
0: अर्जुन और अमसा करुणन के सामने आयरलैंड से आने वाली स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स की जोड़ी थी जो मैच के दौरान चोट के चलते रिटायर हो गई। हालांकि उससे पहले भी मैच में भारतीय जोड़ी का दबदबा कायम था, इसके चलते अमसा करुणन और अर्जुन राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ इस वर्ग में गोल्डन बॉयज की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी को बाय मिला है, वो भी राउंड ऑफ 32 में शिरकत करते हुए नजर आएंगे।

0: अब बात करते हैं महिलाओं की। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी स्पॉटलाइट पीवी सिंधु पर होने वाली थी। राउंड ऑफ 64 में उनके सामने आयरलैंड की सोफिया नोबल की चुनौती कोई खास कड़ी नहीं मानी जा रही थी और कोर्ट पर भी वही देखने को मिला। सिंधु ने दो सीधे सेटों में आयरिश प्रतिद्वंदी को मात देकर अगले राउंड में अपनी जगह बनाई। लेकिन मैच के बाद उन्होंने बताया कि क्योंकि वो इस ओपोनेंट के खिलाफ पहली बार खेल रही थी, उन्हें सतर्क रहना था और साथ के साथ कोर्ट की कंडीशंस को समझने के लिए ये मुकाबला बेहद जरूरी था।
1: Of course, I'm playing with her for the first time, and I think more than anything, it was important for me to just focus on what I do and what I play and how I play. I mean, I was excited to get onto the court happening here in India, so it was really good to get onto the court, and I could see a lot of people cheering and supporting me. I think that gave me a lot of confidence. I mean, irrespective of whoever the opponent is, it was just that I had to just play my game and give my best. It was important for me to get used to the court conditions and see how it is and how the shuttle is. So I was actually figuring out how it is and what it is. It's not like the best element. Obviously, we will play the best badminton, but like sometimes, when you actually get onto the court, you need to understand the court conditions. So today, I think that was the first thing for me that came into my mind. But I think I've managed it well, and the court conditions are pretty good.
0: Sindhu, BWF World Championships 2026 में भारत के लिए पदक की एक प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। लेकिन सिंधु का कहना है कि वो अभी उतनी दूर तक की नहीं सोच रही हैं और उनका फोकस अगले मैच पर है।
1: मेडल तो काफी दूर है, अभी मेरे लिए बस एक मैच एट अ टाइम, वन मैच एट अ टाइम, एंड मैं बस हर एक मैच में अच्छा खेलना है, 100% देना है, और अभी फर्स्ट मैच हुआ है, आई नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट मैच, एंड इट्स जस्ट वन मैच एट अ टाइम फॉर मी, सो आई जस्ट हैव टू गिव माय बेस्ट।
0: जहां एक तरफ पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल जीत चुकी दिग्गज सिंधु है, तो दूसरी तरफ कुछ युवा खिलाड़ी भी भारत का प्रतिनिधित्व इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं। युगल वर्ग में काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही हैं। उन्होंने भी शानदार शुरुआत करते हुए स्पेनिश जोड़ी को दो सीधे सेटों में मात दी। मैच के बाद सिमरन से हमने जानने की कोशिश की कि कोर्ट की कंडीशंस किस प्रकार है।
2: फर्स्ट टाइम है और सब क्राउड हमारा, एंड स्टार्ट में थोड़ा डिफेंसिव स्टार्ट किया, कोर्ट कंडीशंस थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज एक साइड से इट्स वेरी स्लो और बाकी फास्ट है, तो एडजस्ट होने में टाइम लग गया, एंड वी वर प्लेइंग वेरी डिफेंसिव। देन आफ्टर 10-12 पॉइंट्स वी चेंज द गेम, हमने डिसाइड किया हम ऑल आउट अटैक करेंगे, एंड वी आर गोना कीप इट डाउन, एक जन आगे जाके कीप करेगा और अटैक करेगा, तो हमने एंड में गेम चेंज किया, वी वर डाउन बट बहुत लेट चेंज हुआ, सो बट देन लेटर वी कैच इट ऑन एंड वी विन द मैच।
0: युगल वर्ग में ही चोट के बाद वापसी कर रही ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया। ट्रीसा की चोट के चलते कुछ अहम टूर्नामेंट्स में ये जोड़ी शिरकत नहीं कर पाई थी, जिससे काफी मायूस और हताश थी।
3: I think obviously it's sad missing so much of tournaments and our rank also went little bit down. I think those situations I was mentally preparing for that. I just need to recover and just come back and play. And obviously these kind of prestigious tournaments after the injury I am playing, and it makes me more feeling more happy and so excited.
0: लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरजोर वापसी की है। गायत्री के पिता और कोच पुलेला गोपीचंद कोर्ट साइड पर मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में स्पेनिश जोड़ी को 21-9 और 21-13 से इन दोनों ने मात दी। हाँ, भारतीय प्रशंसक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से इनकी हौसला अफजाई करते रहे, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिला और उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला।
4: इट्स अमेजिंग, आई मीन इट्स अमेजिंग टू प्ले इन इंडिया, द होल स्टेडियम सपोर्टिंग फॉर यू, चीयरिंग फॉर यू, इट फील्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा सर, पहला मैच खेल के इंडिया में, वो भी तो बहुत स्पेशल फील हो रहा है, और हाँ बहुत अच्छा था फर्स्ट गेम, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं।
0: चोट से उभरने की कहानी मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर 1 आंसे युंग की भी है। दक्षिण कोरिया से आने वाली इस खिलाड़ी ने बैडमिंटन के हर एक खिताब को अपने नाम किया है। सोमवार को राउंड ऑफ 64 के मुकाबले में आसान सी जीत भी दर्ज की, लेकिन युंग का कहना है अभी वो पूरी तरह से फिट नहीं है। उसके बावजूद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने देश का परचम लहराने का उनका जज्बा है जो उनको यहाँ लेकर आया है। और मंगलवार को भारत का तिरंगा ऊंचा लहराने के उद्देश्य से BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 में अपने सफर की शुरुआत करेंगे लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा। साथ के साथ भारतीय फैंस की नजर मिक्स डबल्स पर भी होगी, जहां ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को तो बाय मिला है, लेकिन आसिफ सूर्या और अमृता प्रथमेश और रोहन कपूर और ऋत्विका गाड़े की जोड़ियां राउंड ऑफ 64 में अपना पहला मुकाबला खेलेगी। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और एडिटर वंदना के साथ दर्पण टिकिया और मोहम्मद शाहिद आजमी की खास रिपोर्ट।

0: সত্যি কথা বলি, এখন তো গরম পড়ে গেছে আর হাজার হাজার টাকার ইলেকট্রিক বিলও আসা শুরু হয়ে গেছে। গিন্নি তো কবে থেকেই বলছে সোলার প্যানেল লাগানোর কথা, বলছে সরকার সাবসিডিও দিচ্ছে। আমি যাকেই জিজ্ঞেস করছি সবাই বলছে জিরো বিল আসতে শুরু করেছে, ভাবছি এবার লাগিয়েই নিই। বিদ্যুৎ যখন বিনা পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে তখন লাগাচ্ছেন না কেন? আপনিও লাগিয়ে নিন পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা। যুক্ত হতে রেজিস্টার করুন pmsuryaghar.gov.in।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर।
2: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है, वेलकम करती है, खैर मकदम करती है आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सिलेक्शना पर्वत, आपके ही पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम नॉनस्टॉप गपशप। और ऐसा है दोस्तों कि हर रोज कोई ना कोई एक विषय जरूर रहता है ताकि उस पर हम गुफ्तगु कर सके, चर्चा कर सके, अपने मन में जो बात सोच कर रखें उस विषय से संबंधित, या फिर उस विषय से संबंधित हमारे लाइफ में कोई घटना घटी है या फिर हमारे लाइफ से किसी तरह भी रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कभी कभी दिल चाहता है कि उसे भी हम किसी से साझा करें। और जब ऐसी बात होती है तो हमेशा रहता है आपके साथ दिल से दिल तक वाला चैनल 107 FM रेनबो, म्यूजिकली ऑर्स रहता है आपके साथ 24/7 ऑल डे ऑल नाइट। और फिलहाल पहला गाना आप सभी के लिए किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म इम्तिहान से।

किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को आपने सुना, फिल्म इम्तिहान से गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गीत सुन के थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ होगा आपको कि आज किस विषय पर हम बातें कर सकते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है नेवर गिव अप डे। नेवर गिव अप अगर मैं कहूं तो हिंदी में इसका अर्थ है कभी हार ना मानना या कभी हार मत मानो होता है। और इसी तरह वर्ल्ड नेवर गिव अप डे हर साल 18 अगस्त को मनाया जाता है, जो लोगों को जीवन में कभी भी हिम्मत ना हारने और संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा देता है। कभी हार ना मानने के प्रेरणादायक विचार, इंस्पिरेशनल कोट्स के बारे में कहूं तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जो गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है वही असली विजेता बनता है। अगला गीत फिल्म थ्री इडियट्स से

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

जी दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेवर गिव अप डे, तो जाहिर सी बात है कि आज नॉन स्टॉप गपशप में भी बात होगी इसी विषय से रिलेटेड। कहते हैं कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक उम्मीद है तब तक जीत की संभावना खत्म नहीं होती। जीवन में इसका महत्व हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, निरंतर प्रयास परिश्रम से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। और अब आगे बढ़ते हुए आप सभी के लिए किशोर कुमार और साथियों की आवाज में फिल्म मिस्टर इंडिया से ये गाना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।

0: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 10:32:44 और हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं अजय दुबे जी, हिंदी दैनिक पत्रिका के अखबार के एडिटर हैं। हेलो
1: जी,
0: नमस्कार जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में।
1: जी नमस्ते दीदी।
0: और ये बताइए कि आज जो हमारा विषय है नेवर गिव अप डे, ठीक है, तो 365 दिन में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन हम मनाते हैं विश्व स्तर पर कि नेवर गिव अप डे, हार ना मानने का दिवस। तो आज के दिन आपके जीवन से जुड़ी कोई ऐसी घटना है जहां आपको लगा था कि शायद अब मैं मतलब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, शायद हार मान लिए थे, लेकिन दूसरे ही पल आपको लगा कि नहीं, जीवन चलने का नाम है और आगे बढ़ने का नाम है और हारना बिल्कुल नहीं है, जीत की ओर अग्रसर होते हुए आगे बढ़ना है।
1: जी दीदी, जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि जब मैं बलिया छोड़ के भोपाल जब आया तो मेरे लिए वो पूरा वीक ऐसा कठिनाई था कि मैंने छोड़ा, सोचा कि ये जिंदगी बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता है। उसी बीच हमारे एक मित्र मुलाकात हो जाती है, न्यास विजय सिंह राजपूत जो हरदा से निवासी है
0: जी,
1: और उनकी मदद से फिर मैंने जो आगे बढ़ना चालू किया, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और जीवन का बड़ा आनंद आया। लेकिन होता है कि जब डेंट आते हैं तो जो उसको संभाल लिया वो संभाल लिया, नहीं तो फिर वो तो रहता है लास्ट।
0: तो आज उस इंसिडेंट के बाद कभी फिर ऐसा कभी कोई मौका आया जब आपको लगा होगा कि नहीं, फिर से कहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन खुद को आपने मोटिवेट किया होगा या फिर आपके कोई अपने होंगे जो आपको प्रेरणा दिए होंगे कि नहीं आगे बढ़ते चलो?
1: नहीं, रहा मित्रों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिनका नाम लिया उन्होंने बोला कि दुबे जी क्यों नहीं हो सकता है, मैं हिंदी फील्ड से था, उन्होंने मेरे को सिस्टम पर काम सिखाया कि ये कंप्यूटर ऐसे काम होता है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे, उस समय कोई कंप्यूटर या सिस्टम का कोई वो था ही नहीं। लेकिन उनका ऐसा सहयोग और मार्गदर्शन रहा कि जब भी मैं विचलित हुआ तो उन्होंने पीछे से हमको पुशअप किया और बोला कि मैं हूँ।
0: ये मैं हूँ जो है ना, ये मैं हूँ सिर्फ दो शब्द नहीं, ये ऊपर वाले की तरफ से भेजे गए वो मतलब क्या बताएं, वो देवदूत होते हैं जो हमें हिम्मत देने आते हैं। तो ये बताइए कि आज के इस विषय से संबंधित कोई गाना आपको याद आ रहा है या फिर कोई गाना सुनना चाहेंगे?
1: वो एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के।
0: हाँ, तो ये गाना तो मैंने प्ले कर दिया है, इसी से आगाज किया था कार्यक्रम का। इसके अलावा कोई और गाना?
1: जिंदगी हर सफर एक नई जंग है।
0: हाँ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है,
1: नई जंग है।
0: हाँ चलिए, ये गाना मैं आपके लिए प्ले करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि आप क्या हमारे जितने भी श्रोता हैं, मतलब जितने श्रोता क्या मतलब दुनिया के हर एक इंसान कभी भी हार ना माने और हमेशा हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भोपाल से जुड़े अजय दुबे जी, और यूं ही जब समय मिले तो बिल्कुल जुड़ा कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं कार्यक्रम में तो चार चांद लग जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू दीदी, थैंक यू।

आज के दिन। आज के दिन सेगमेंट में आपसे साझा करूंगी कि इतिहास के पन्नों में 18 अगस्त के कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं दर्ज हैं। सभी नहीं, लेकिन कुछ एकाध तो जरूर साझा करूंगी। 18 अगस्त का दिन साहित्य, विज्ञान और खेल जगत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और उपलब्धियों से जुड़ा है। इस दिन व्लादिमीर नाबोकोव का प्रसिद्ध उपन्यास प्रकाशित हुआ था। अंतरिक्षीय रूप से हीलियम और मंगल के उपग्रह की खोज हुई थी तथा कई महान खेल रिकॉर्ड बने हैं। साहित्य जगत की बात करूं तो 18 अगस्त लोलिता उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1958 में। रूसी अमेरिकी लेखक व्लादिमीर नाबोकोव का बेहद चर्चित और विवादित उपन्यास लोलिता पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुआ था। जगत प्रसिद्ध हस्तियों के जन्म के बारे में कहूं जो भारत से जुड़े हैं तो हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार और कवि गुलजार, जिनका पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, उनका जन्म हुआ था 1934 में आज के दिन 18 अगस्त को। और इसी के साथ ये भी बताना चाहूंगी कि भारत के महान राजनेता व लेखिका विजय लक्ष्मी पंडित का भी जन्म इसी तारीख को हुआ था 18 अगस्त को इन द ईयर 1900। और विज्ञान जगत की बात करूं 18 अगस्त से तो हीलियम की खोज हुई थी। फ्रांसीसी खगोलविद पियरे जॉनसन ने सूर्य ग्रहण के दौरान और वर्णक्रम में एक पीली रेखा देखी जिसे ब्रह्मांड में नए तत्व हीलियम की खोज हुई। मंगल के उपग्रह फोबोस की खोज 1877 में हुई थी। आज के दिन अमेरिकी खगोल शास्त्री असाफ हॉल ने मंगल ग्रह की आंतरिक और बड़े उपग्रह फोबोस का पता लगाया था। 1949 18 अगस्त को जो है वो एडिडास की स्थापना, खेल के सामान और जूते के विकास में वैज्ञानिक व तकनीकी डिजाइन को बढ़ावा देने वाले ब्रांड एडिडास की नींव एडी डैसलर द्वारा इसी दिन रखी गई थी। खेल जगत की बात करूं तो 18 अगस्त लू गेहरिग 1931 में बेसबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ने न्यूयॉर्क यांकीज के लिए खेलते हुए अपना लगातार 1000वां मैच खेला था, जो खेल जगत में सहन शक्ति का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 1922 में 18 अगस्त जीन सारा जेन की जीत। महज 20 साल की उम्र में गोल्फ के महान खिलाड़ी जीन सारा जेन ने PGA चैंपियनशिप जीती थी। और आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन का जो अंत हुआ था 18 अगस्त का तारीख, उनकी कथित मृत्यु और विमान दुर्घटना के इतिहास से जुड़ी है। यह घटना आधिकारिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार 18 अगस्त 1945 को ताइवान तत्कालीन जापानी शासित फार्मोसा के ताइहुक हवाई अड्डे पर उनकी जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए थे और उसी दिन उनका निधन हो गया था। और आज जो विषय मैंने रखा है वर्ल्ड नेवर गिव अप डे, 18 अगस्त को दुनिया कभी हार ना मानने वाला दिवस मनाती है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 10:46 और फिलहाल आपने ट्यून कर रखा है दिल से दिल तक वाला चैनल, यानी कि म्यूजिकली योर्स 107 FM रेनबो, जहां हम और आप कनेक्ट होते हैं हार्ट टू हार्ट और कार्यक्रम सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप विद योर आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

0: बिल्कुल सही बात है, जीवन चलने का नाम, जो रुक गया वो फिर थक हार के बैठ जाता है। और हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग दिल वाले हैं, और दिल वाले जो है ना उनकी धड़कनें चलती रहती है, ठीक 107 FM रेनबो की तरह। और ऐसा है कि देखते हैं हमारे टेलीफोन लाइन पे कोई कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं, कौन है उनसे बातें कर ले। हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं बेलगरिया से शुभजीत बोल रहा हूँ।
0: बेलघोड़िया से शुभजीत। तो ऐसा है शुभजीत कि आज जो विषय हमने रखा है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। और आज जो विषय है वो है नेवर गिव अप।
1: नेवर गिव अप,
0: हार नहीं मानना है। तो ऐसा कब कब हुआ आपके जीवन में जब आपने हार नहीं माना?
1: पहली बात तो ये है कि मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट बोल सकते हैं, जो मैंने कभी भी नहीं किया, क्योंकि जब तक मैं घर पे था मेरे मम्मी हमेशा मेरे सामने खाना वाना दे देती थी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था, पानी के लिए भी मम्मी को बोलता था, और मम्मी चिढ़ती थी बहुत। तो एक टाइम आया जब मैं बाहर चला गया नौकरी के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में पहले फिर नौकरी, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल लाइफ क्या है। और मैंने पहला जो चीज मुझे लगा कि मुझे होटल का खाना तो पचेगा नहीं, तो मुझे क्या करना है, घर पे घर का अरेंजमेंट किया। और कितनी बार ऐसा हुआ कि ये जो लड़का कभी जिंदगी में कैसे चावल बनाता है, कैसे चाय बनाता है उसको पता नहीं है, वो कितना खाना जलाया। मैंने खिचड़ी बनाया बिना दाल का, कितनी बार भूल गया हल्दी और चावल से, खाना जला, जला हुआ खाना खाया, मतलब मजबूरी था क्योंकि दोबारा कुकिंग करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि कॉलेज था।
0: सुभजीत, ऐसा है ना कि ये जो चीज है ये हर एक के जीवन में कभी ना कभी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन क्या है ना कि वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है, एंड वी रियली एंजॉय दैट फेज आल्सो।
1: ये एक्चुअली तभी होता है जब आप रियलाइज करते हो कि आपके आसपास कोई है नहीं, आपको ही करना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है।
0: और कोई किस्सा है जहां आपको लगा कि नहीं मुझे हार नहीं मानना है?
1: और ये बात बता दूं कि ये करने के बाद आज एक टाइम आया, ये हुआ इतने साल तक कि मैं अभी जो भी कुछ खाना बिना, मतलब मछली के अलावा चिकन मटन जो भी पनीर वगैरह सब बना सकता हूँ, और मम्मी को खिलाता हूँ, पापा को खिलाता हूँ, सबको खिलाता हूँ।
0: चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि हमारे श्रोता जो है ना वो बहुत अच्छे कुक भी हैं, बहुत अच्छे शेफ भी बन गए हैं ना, जो काम करते हैं उसके साथ साथ। तो बहुत अच्छा लगा शुभजीत, आप जुड़े कार्यक्रम में, और जब समय मिले तो बिल्कुल जुड़िएगा, क्योंकि आप श्रोता जब जुड़ते हैं तभी तो कार्यक्रम में और रंग बढ़ जाता है, गहरा हो जाता है, और वो सारे के सारे रंग प्यार के होते हैं। तो चलिए मैं रखती हूँ अभी, और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ऐसा है दोस्तों कि स्टूडियो की घड़ी जो है अभी इशारा कर रही है कि सुलक्षणा आज के लिए जो है थोड़ी ही देर में श्रोताओं को विराम देना पड़ेगा, ये कार्यक्रम को आगे हम और नहीं बढ़ा सकते आज के लिए। अब घबराने वाली बात नहीं है, मैं तो एक ही चीज जानती हूं कि कभी हार नहीं मानना है, बस चलते रहना है, स्पीड भले कम हो जाए, गति जो है वो कम हो जाए, लेकिन सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और जब डायरेक्शन और स्पीड दोनों का तालमेल सही रास्ते पे होता है तो मंजिल दूर कभी नहीं होती, और सफर में भी बहुत आनंद आता है। असली मजा तो सफर का ही है, और ये सफर ही है जिसमें हम हार और जीत की जो है ना ये नब्ज हम महसूस कर लेते हैं। तो ऐसा है दोस्तों कि अब हम और आप जो हैं आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपके लिए एक बेहद खूबसूरत गीत डियर जिंदगी से, लव यू जिंदगी, जसलीन रॉयल की आवाज में। और इस गीत को सुनते सुनते आगे दीजिएगा सुलक्षणा पर्वत को, और चलते चलते यही कहूंगी कि आपका दिन मंगलमय हो।

0: 기누아? 에, 기누아?
1: 아, 짜자. 아, 짜자.
0: 레, 먹시슬레. 사해, 뭣, 구소에 길로.
1: 구소에 글라이. 꽃이, 이러는 망소, 커버. 뭣, 버리자니, 허제, 하미, 짜자. 에, 이런 더, 저랄 빨아, 주제.
0: 아, 때라, 띠, 비터, 비즐리까, 마픽, 주제. 이거 뭐, 시간, 나절음에, 아, 자이가, 또.
1: 마이버스.
0: 컸던 막가 시카리
1: 자 장글에 자노아르 또 데기슬라이 디막 또 힘 해야 잡아야 하
0: 도와르게 피덜 도바르 셰르 말아타 네
2: लेकिन ये चीता बड़ा होशियार जानवर जंगल है लीजिए के इमन छुपा के रख बे और मौका मिल बे तो एकदम घर है झपा पड़ बे बहुत आरामी
0: हां हां सुन साहब ने बोला घिनुआ के एक रोज एक तो सूअर मार के लाने बोलो
1: सूअर मिलवे तो अब ना बागे सब खेली चा
0: आ मोटा बक्सीस मिलवो
1: चरेस्टा करबो चाचा जाए बहुत बेला है गला चाचा
0: अरे वाह अरे हमारा हिस्सा दे
2: तुहार बहुत बुरा आदत आते चाचा
1: कहे कहे
2: अरे दिन भर मुंह जंगले जंगले शिकार ढूंढबो जानवरेर पीछे पीछे छूटबो और तू घोरे वैसे हिस्सा ली भी
0: अरे द्वार के लिए सबका पास हम दरबार नहीं करते
1: अरे लेकिन तू तो नौकरी चाकरी करी चाचा
0: ये हमारा हो काज
1: ये हम चाचा ये गोविंद सिंह ही खाने
0: हाँ अरे सांप का भेद देने आता
1: सालो पहला नंबर है हरामी गरीब लुकर खेती बारी गाय भैंस जबरदस्ती उठाए ले जाए सालो मोटर गाड़ी चपे
3: ए हमीद साहब है
4: हाँ जी
3: ए मधो
5: ओ मालिक
3: झुराटा जल्दी अंदर ले जा
0: ए घिनुआ कैसी कर लिया सुची सा
1: हिरन महाजन
0: कल ये साहेब शिकार खावे हमरा के एक रोज खरगोश खिला
1: खरगोश खावे
0: कहे अरे बक्सीज मिलबे तुहार के
1: हां चलो पहला नंबर मक्खी चूस

0: What?
1: You are a bloody clown.
2: Tumhara meherbani sahib.
1: No, number one jackal.
0: Yes, sir. A rascal.
2: Very good, sir.
1: Dekho, Kabir. Tumhake amar darkar ache.
2: Tumhare liye banda sab time hajir hai, Baun sahib.
0: साहेब तुम्हार के एक रोज मुर्गा भेज दूप मुर्गा
1: आ? मुर्गा
0: जंगली जवानी
1: जंगली मुर्गा
0: ये सिकट तो घिनला कभी आई तिलार राजा लड़ने वाली
1: लड़ने
0: अब समझ गया मुर्गा फाइन
2: लेकिन साहेब हमरा के थोड़ा मदद दीते हबे
1: श्योर श्योर श्योर बोलो बोलो कैसा मदद
2: हमरे मोहल्ला में एक लाया दुश्मन आमदनी है छे
1: दुश्मन
2: पहला नंबर हरामी संताल दे ख्यापा कई छे बोलछे महाजनेर खजना दिब्बे लाई दादन लिब्बे लाई बेड बेगारी खजबे लाई देखो महाजन रा मुद्दे दुश्मन
1: तुम्हार जमीन वारा चाश करे खजना ना दिबे तो मामला करे वादेर खेती बाड़ी छीन लो तुम्हार बंदूक भी आजे खत्म करो
2: संताल दे तुम्हें चीनो ना साहेब तीर्थन लिए दिन रात जंगल ले पहाड़े घूमे जानवर भी उलूक के डराए हमरा के
1: तोड़ा गविद हा जरूर मदद करो लेकिन ओ ये दुश्मन दुश्मन का घर कहाँ घर
2: ई लुक का कोई पत्ता है साहेब

0: मतलब तुम्हारे गांव का आदमी नहीं है?
1: नहीं नहीं, कभी कभी गिरा में आसे संताल दल लिए मीटिंग करे खेपा करे।
0: ऐसे नाम क्या आचे?
1: झापट सिंह।
0: हाँ झा डरो मत डरो मत गोविंद डरो मत, तुम्हारा वो झापट सिंह को एक झपट से निकाल देंगे।
1: जोर माई बाप।
2: खेदा करते
3: अरे
2: मंगू
4: लेकिन
2: लेकिन क्या लेकिन
4: गोविंद सिंह बंदूक आछे।
2: अरे रहने दो, हमरा के कुचला तीर भी आछे, डाले चलबे कलाई। ये सालो गोविंद सिंह मुझे जमी जीरे गोरु भैंस छीन ली थे, मैया तेरी इज्जत ली थे, मोना बर्दाश्त करबो कला
3: लड़ाई करबो।
4: ई कजन मिला
2: नहीं, इटार जन्य बहुत लोके दरकार, महल्ला महल्ला जे
4: संताल जे समझाते हबे समझाते हबे।
2: इकु महाजन मुझे दुश्मन, इधर खत्म करते लाले मुझे मरण निश्चित, कोई बाजबो लाई।
4: लेकिन हथियार तो चाहे।
2: हाँ जरूर जरूर चाहे, पूरा घोरे घोरे कुचिलाती धनु टंगी बलवा बनाबो। हाँ वहाँ जो ने बहुत टका दरकार, बहुत
4: से टका दिबे के
2: लोट करबो, लोट। हाँ वहाँ जो देर को दे लोट करबो,
4: लोट करबो,
2: साहेब देर खजना लूट करबो।
4: ठीक कह छ सरदार।
2: क्या डोर लाइक जे?
4: लाई लाई सरदार।
2: सुनो बाईस ते गले लड़ते हबे
4: लड़ते हबे,
2: हिम्मत चाहिए हिम्मत।
0: और कोई बेईमानी करबे तो
4: और चट खत्म कर
2: सवार।
0: और याद रखना गोविंद सिंह को मुरा खत्म कर बोई, मुझे पहला नंबर है लिशाना।
5: अरे चाचा तीतीर मलाम।
6: हाँ?
5: अच्छा करे राम, आज तीतीर और हाड़िया खावो खूब खावो पेट भर के खावो।
6: निजे लाख है साहेब के दिले तो दो तो टका बॉक्सिस मिलतो।
5: अरे उस सालों के बहुत खिलाए ची हिरन संबर सुअर
6: बॉक्सिस तो मिल छे।
5: हाँ ये बॉक्सिस लगे तो दिन भर जानवर देर पीछे जंगल है छुट्टी, लेकिन मुद्दे तो पेट अच्छे भूख अच्छे। जा जा जा जा जल्दी रंधा कर मुझसे नान तो कर।
6: सुन महाजन ऐसे छिलो
5: गोविंद सिंह।
6: हाँ हिस्सा लीते
5: वार हिस्सा ही जिंदगी में मीट बेकला है। तीन साल पहला दस टका उधार करे छिला, वही वही वही तुवार जोकन भारी बेमो है मासे दो टका बहास
6: बुले छे।
5: की बुले छे?
6: हिस्सा दीते लाले बकरी तो उठाए लिए जाबे।
5: ये जुलूम बाजी कब तक चलबे बोल तो आधी।
6: सोई तो बोल छिलाम बक्सिस ठीक है कुछ कुछ टका सो दिलाई तो।
5: अरे बक्सिस महीना में कोटो मिले खाबो ना उधार सो दुबो। सालो जंगले जानवर मोहल्ला जानवर, अरे मुदर जिंदगी तो लड़ाई करे गुजार तो होबे। साला इमोन कपाल मोर।
6: तोर कपाल तो खराब किसे करता संतालेर कपाले चाउल जुटे। हाँ सब तो घाटो खाए किसी दुख तोर
5: लक्ष्मी।
6: हाँ
5: अरे तू आचीज तो हमारा और दुख को किसेर बोल। हमार लक्ष्मी हमार जान मेरी जान। अरे लक्ष्मी
6: चोर चोर। अरे चोर की पड़वो
5: लाई लाई
6: चोर।

0: मानी
1: भाई
0: भाई
1: भाई पके ने
0: अरे मुहाजन गोविंद सिंह चौकीदार लिया आसे छे भाग भाग जल्दी
2: अरे ए कुड़ा कुड़ा माजी घर के आचिस
0: गौर लगी चौकीदार जी
2: मुहाजन आसे छे तू हर के बुलाई छे
0: कने
2: सालो उधार ली भी

0: ったんですかね。ヘマニー。さえくばっちゃーでみー。なりすら、なりすら。
1: とまっこちょだらない。とまけ、とまけ、あみ、あみ、ぼーっぴょーるかよ。
2: むこっちょぼ。むこっちょぼ。いまじゃん。むこっちょぼ。
0: じっぴじっぴじっぴ。とちゃろげ。साहेब सेवा कर
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ऐ तुम्हें हमारे घर का काम काज सब करवे अब के थोड़ा जगह सुना करवे अमित
3: जी साहब
1: मजा से रहेगी तू हाँ हाँ
0: कभी दादी आराम से खाएगी कुनो डर लाही कुनो डर लाही
1: कुनो डर
2: हमने के घर दिया ही महजन मुगो चुपो गोड़ दरे महाजन तुअर गोड़ दरे
3: साहब
1: यस हमीद मैं था अमार घरे काम काज सब कोर भी वहाँ के नहीं आ जाओ सुनो थाका खवार सब व्यवस्था कोई कनाशु भी ना मालूम

0: जी साहब।
1: वो कौन चबा ए मोहनजन,
2: अरे वो कौन चबा जा
1: कौन चबा मोहनजन,
2: तुझा झपड़ेला दलान बहुत आराम से थाई भी जा जा जा जा कोई डर नहीं जा क्या बाउंसा है मुर्गा तो किमोन
3: बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसा ही हम मांगता था जंगली मुर्गा
2: लेकिन साहेब हमरा जान तक खतरा में है साहेब।
3: क्यों
2: हमरा के बचा
3: का हुआ
2: वही झापो से हमारा गद्दी लूट कर भी मतलब कैसे
3: लूट लूट कर बे सो इजी ए तो सहज लोक गोविंद तुम्हारे लोक आजे गन आजे
2: माधव खबर लिया से छे झापड़ दौल बना छे।
3: देखो गोविंद
2: साहब
3: तुम हमारा अपना आदमी तुम्हारे रक्षा करा हमारा धर्म
2: साहेब।
3: आई विल टीच दैट ब्लडी निगर डरो मत तुम पत्ता लगाओ गोविंद पत्ता लगाओ हम भी दारोगा को खबर भेजते हैं
2: हजूर माय बाप।

0: Aisce, Osia,
1: kilka cię za dar.
2: Aisce, za dar.
1: Aisce.
3: No to tak.
0: What? এত বড় সাহস আমার সিপাহীদের মেরে খাজনা লুট করেছে, বিদ্রোহ হিম্মত।
4: বলেছিলাম না সাহেব, এসব ডাকু।
0: Shut you coward! কোই কাম কাজ মি নেই হে তুম কাবিন, ইউ আর স্টুপিড।
4: Yes sir, ये वही झापट का काम साहेब।
0: ओ झापट झापट झापट। आई विल सी दैट ब्लडी निगर। आई मस्ट स्टॉप दिस गेम। ब्लडी झापट।
4: साहेब, झापट तो गांव में रहता नहीं, वो कौन आसे कौन जाए।
0: ओहो, देन हाउ हाउ हाउ आई विल कैच हिम एंड किल हिम।
5: साहेब
4: साहेब, साहेब, हमार मथाय एक तो मतलब ऐसे अच्छे।
0: मतलब
4: ये घिनुआ को लगा दो साहेब।
0: घिनुआ, घिनुआ की कारवे?
4: घिनुआ सर झपुटर पत्ता रखे।
0: नहीं, घिनुआ बिल्कुल सादा सीधा गरीब आदमी।
4: वही तो सुविधा, गरीब आदमी के दिए काम तो हासिल करो।
0: का काम?
4: बड़ा शिकारी, पक्का इंसाना, झपट खत्म। बोलबे शिकार तो करे दीदी तो तुहार 500% बक्सिस दीपो। साफ मिलबे, लाठी भी टूटबे कलाई।

0: हिसाब?
1: हाँ हाँ, जुड़ो जुड़ो हिसाब जुड़ो, तू आर पावना मिटाय दूँगा।
0: मोटा बॉक्सेस मिल ची मने लाए।
1: फालतू बच्चों, बोलो कत्तो टका उधार?
0: कत्तो टका? सब सोच दे भी लगी
1: रहेगी। हाँ, तू आले हाँ दूसरों ने साथ कुनो सोंपो को राग बोलाई।
0: बट्टे बट्टे, खूब टक्कर गरम है चे देखी। अरे गिनुआ, साहब जेब भर के गई ची हाँ?
1: बोल, कत्ते टका पावना बोल?
0: अरे ठेर ठेर, अत्तो गरम है ले चुल बे। तीन साल पहले 10% उधार ली चली हाँ, असल सूद मिलके 220% हुई अच्छे।
1: क्या? अरे मुँह तो कभी कभी ब्याज नहीं ची।
0: हाँ हाँ हाँ, ये देख 80% बाद दे ची, देख देख खाता देख, अरे देख, तू तो लिखा पढ़ा जानिस लाई।
1: तुम्हारे रूख खाता भगवान ने पैसे लाए थे, ठीक है ठीक है, और जमीन बांधा दिए चिलाम, 4 साल फसल तू उठाए चीज, साल में आधा मन धान हमरा के दीवार वादा करे चली, एक दाना भी दिस लाए, सुन महाजन, सब मिलजुल के तुम्हारे मुँह 100% दूबो।

0: मोर कागज तो वापस दे
1: 100%।
0: हाँ
1: सौ टका सालो बेग दे चल लकड़िया
0: उस सब धंधाबाजी चोर महाजान टका ले कागज वापस दे सालो मूर साथे चोट्टा में चल बैक लाए। हाँ
1: आए, जबन संभाल के बात कर गिनवा आराम चाह दे बड़ा तेल है।
0: आए, आए, आए, आए, आए, आए, आए, महाजान आए गाली दी बिलाई जीप तो खिंचा ले बुआ
1: ले सालो एतो हिम्मत तो
0: हाँ हिम्मत जंतु जानवर साथे लड़ाई करे बेचा छी तू हार लेहन जानवर के
1: লাজার রাখ এই সাল ঘিনুয়ার কখন ঘরে থাকে না আমরা কি আগ দেখাই আমরা কি আগ দেখাই ইতনা হিম্মত মাধো যা জলদি যা কাল সুবে হামলে কে পাক্কা খবর দেবে নাই তো তুহার কে নিকল দেবো যা।

0: ए माने रोटी काहे ए बिटिया रोमात रोमात
1: हमरा के छेड़े दे हमी चाचा हमरा के छेड़े दे हमरा के घर बेच दे चाचा हमरा के मत चाचा
0: रोमात बिटिया रोमात मतलब सोचने पड़ेगा देख देख बिटिया तेरा मापिक हमारो भी एक तो मियां आछे मौका मिलबो तो तुआ के हमी भगाए दिबो रोमात रोमात बहुत होशियार किसी से कुछ बोलना मत रोमात रोमात बिटिया

0: साहब ही साहब।
1: चिल्ला इसके नहीं।
0: अरे साहब को जल्दी बुला चाचा।
1: क्या हुआ क्या?
0: अरे बहुत भारी शिकार लिया से जी।
1: कौन से शिकार? कहाँ शिकार कहाँ?
0: अरे ये तलिया में।
1: तलिया में? अरे देखा देखा।
0: लाई लाई लाई लाई। जो साहब को बुला जा जल्दी बुला। आज मोटा टाका बक्सीस लिया घर है फिर वो।
1: हाँ हाँ लेकिन ऐसा कौन शिकार तू तलिया में?
0: अरे तू जाना जा। आज साहब को दिखा दू वो घिनुआ कैसा शिकारी। हाँ
2: क्या हुआ
0: घिनुआ मुराद बेटा?
2: है घिनुआ? कौन सा शिकार?
0: अरे बहुत भारी शिकार साहब, मोटा बक्सीस चाहिए। हाँ
2: हाँ कहाँ शिकार? कहाँ?
0: इस थलिया में। तकाची तकाची तक
1: देख देख। हाँ ओ माय गॉड
0: का खुशी तो
1: गोविंद सिंह माता।
0: गोविंद सिंह माता आज आठ बक्सीस भी तो हो साहब।
1: तूने क्या किया घिनुआ?
0: अरे जाबर सिंह तो बहुत भला आदमी था। उहार मुरठर भाव तो तू हमरा के 500 टका बक्सीस दे छिली। इस हालो गोविंद महाजन तो पहला नंबर हरामी आर माथा लेके आजाद टुकड़ा तो निकलाई।
2: वेल डिबे डिबे डिबे तू यहाँ ठहर, यहाँ ठहर। हमिद तू भी यहाँ रहो।
0: जल्दी जल्दी जल्दी बक्सीस तो लिया है साल। और इतना हिम्मत हमारा हाथी को उठा लिया जाए चिलो साला महल्ला दुश्मन थे।
2: यस बिल्कुल खत्म। वो गोविंद सिंह माथा तो केटे लिया से छे खिनवा। हाँ बक्सीसे लोभ देखाए हुआ के बाहरे घरे बसे राखे छी। जल्दी चले आना। ओ हाँ एक कथा, तुम्हें एखने दारोगा नाई खजानची बाबू मालूम? ओ लिसन लिसन लिसन दारोगा, यूनिफॉर्म पहनने का कोई जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म छाड़ा आशमे समझा? इज अ डेंजरस मैन। एक दफे यदि वार मालूम पड़े कि पुलिस वहां के गिरफ्तार कर आशी दे तो बहुत झमेला हो। वो जंगली जानवर फेरोसस देन अ टाइगर, बट हाँ एट हार्ट इज अ वेरी वेरी सादा सीधा भालो आदमी। वेल दरोगा जी बी केयरफुल।
1: सब खिनवा तो बड़ा चटपटा इच्छे बहुत चिल्लाता है।
2: ओ हमीद वाके एकाने लिया आशो जाओ।
1: जी साहब।
2: कांट इमेजिन एक तो मानुष के खून करे तर माथाटा केटे। ओ हरी होल।
0: अरे साहब अरे सांझ जैसे गलो बॉक्सिस तो दिया था घर जाए।
2: हाँ हमीद तुके घरे पहुंचाई दीवे डरो मत।
0: अरे जल्दी करो जल्दी करो। हाँ
2: हाँ बहुत अगर मामला हमें यो खजानची बाबू के खाने आश्ते बोले ची
0: रामा टोका दी भी तो।
2: हमीद तुम जाओ। हमीद जाओ कोई बाहर से आसबे तो हमार काछे भेजे दीबे।
1: जी सर।
0: खजानची बाबू कखन आसबे?
2: अभी अभी आ जाएगा। ए तो छोट फोटाले चोरे अतगुलो टाका
0: आधी बोले चिलो साहेब तुहार के बहुत प्यार करे।
2: प्यार तो हमें जरूर करे जरूर। अरे आओ खजान जी बाबू आओ। ये हमारा घिनवा।
1: अच्छा
2: बहुत भारी शिकारी।
0: हाँ हमारा बक्सीस तो जल्दी जल्दी दिए दे बहुतों घरे छटपटाई जाए।
3: कत्तो टका?
2: ओ 1000।
3: 1000 तो टका तो खजान जी कने लही साहेब दो चार रोज टाइम लगबे। अरे बाबा तो टका तो जुगाड़ करते हो बैक।
2: तो ठीक है एक काम करो घिनवा तुम्हारे साथ चार रोज रहेगा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं चार रोज मोट ठेक तो लग बा।
3: अब तो टाका मिल लो ना मुश्किल हो बैक।
2: हाँ हाँ ए घिनवा अरे यहाँ ठहरने को तेरा क्या असुविधा है? खजानची बाबू आचे तुम्हार कोनो असुविधा हो ना?
0: लेकिन हाँ थी।
2: ओहो ओ हम कल सुबह खबर भेज दो। हाँ कोनो चिंता ना है।
0: लेकिन बॉक्सेस तो मिल बैक।
2: हाँ जरूर टाका लेकर घर जाएगा। हा, हा, हा। जाओ खजांची बाबू जाओ इसको लेते जाओ जाओ संग संग लेते जाओ जा जा खिनवा जा, है, जा।

0: साहब ई साहब और कितने रोज हमरा की घने राग मिले साहब
1: चिल्लास कने घने वा
0: अरे हमार बॉक्सिस्टर दिया दे दो रोज होए गलो
1: अरे टक्का कर आय तो साहेब आशे अशन अशन साहब अशन
2: की होए छे घिनवा
0: अरे हमरा के चर रे घर जुबो
2: हां
0: घर जुबो
2: बक्सी लिबे ना विचार विवेचना करे
0: अरे तुहार की मन विचार की सर विचार साहब ई साहेब तो कौन है कमिश्नर साहब कौन कौन
2: वही तो फैसला कोरबे सबसे बड़ा जॉर्ज
0: जॉर्ज सीटो की
2: आहा वही साहेब तो बोलबे जे कतो टाका सोना चांदी दिवा होबे
0: सोना चांदी हाय बाबा सलाम साहब सलाम साहब सलाम
3: तुम्हार किछु बोलार आछे गेनुआ
0: हमार जो बोलार ओ कमिश्नर साहब सब जाने गोविंद सिंह हरामे खतरनाक महाजान वार मुराटो साहेब के देची हमरा के 1000% बक्सिस दिवे साहेब ले छे हां
3: गोविंद सिंह के तुम ही मारिया छो As per confession of accused Genua Maji is punished under section 302 of Indian Penal Code. Hang till death.

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। उम्र गुजर रही है मगर सफर अभी बाकी है, जो टूट कर बिखरा हूं तो उसका असर अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, लोग मेरी हार के किस्से सुनाते हैं, उन्हें मेरी जीत की खबर होना अभी बाकी है। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 3:03 हो चुके हैं और मैं हूं रिंकू। जी हाँ, आपको 107 FM रेनबो पर चले आए हूँ सुनाने कार्यक्रम तीन का तड़का।
0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: दोस्तों, जब सबको लगता है कि कहानी खत्म होने को आई है, पर जीवन में ऐसे ही एक क्षण में कहानी सबसे सुंदर मोड़ पर आकर अपना एक नया अध्याय शुरू करती है। या तीन का तड़का भी कुछ ऐसे ही कार्यक्रम मसालेदार गानों के साथ बना है और इनकू के साथ आप सुनते रहेंगे तीन के तड़के में एक से एक मस्ती भरे गीत। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए मोहित चौहान की आवाज से पहले शुरू करते हैं मटर गश्ती की ये पहली धुन।

की आवाज में मोहित चौहान बोल रहे थे। जिंदगी तो वैसे झांसा दे ही जाती है, लेकिन मटर कश्ती के अपने भी फायदे हैं, क्योंकि आप तय करेंगे कि जिंदगी को झांसा कैसे आप दे। वैसे इरशाद कामिल के बोल थे और A.R. रहमान का संगीत। फिल्म थी तमाशा, जिसमें रणवीर कपूर ने अपनी दीपिका पादुकोण के साथ बहुत ही सुंदर अदाकारी की थी। इस पिक्चर को ज्यादा दर्शकों ने शायद पसंद नहीं किया, लेकिन गाने इसके बहुत हिट थे। वैसे आइए आपको एक जरूरी सूचना बताऊं, मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम विभाग क्या कहता है, आइए सुनते हैं।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हम बता दें आपको कि मुर्शिदाबाद के जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटों के दौरान यानी कि 18/8/2026 को ही आज के दिन 14:10 यानी कि आपको मिलेंगे ये मध्यम गरज के बिजली के साथ। तीव्र वर्षा होने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप सतर्क रहिए, उधर समुद्री हिस्से के बीच ना जाए, क्योंकि 2-3 घंटे में बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी, बिजली के साथ तीव्र वर्षा होने की आशंका है, खतरे की संभावना है, इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहिए।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, नीरज श्रीधर की आवाज में आप सुन रहे थे लव आजकल फिल्म से। इरशाद कामिल के बोल थे और प्रीतम जी का संगीत था। वैसे दोस्तों, जब भी करो बात तो मुस्कुराया करो, क्योंकि जैसे भी रहो खिलखिलाया करो, क्योंकि जीवन एक नदी है, तैरते जाया करो। ऊंच नीच होगी राह में, फिर भी बढ़ते जाया करो। दोस्तों ऐसे ही 3:00 हमारे बीच 17 मिनट हो चुके हैं और गीतों का सिलसिला जारी है। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो रिंकू के साथ, लेकिन साथ ही में एक गीत के बाद हम आपको सुनाएंगे परियोजना प्रस्तुति। लेकिन दोस्तों वैसे तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, क्या कहे कि सरासी जीने का पूरा हिसाब रखते हैं, हटा के चेहरे से सारे नकाब रखते हैं। उन्हीं के हाथ में बिच्छू भी देखे हैं हमने, लगा के कोट पे जो एक गुलाब रखते हैं। आइए सुनते हैं अमान मलिक और पलक मुचल की आवाज में ये गीत।

0: हर ख्वाब मुकम्मल हो कहाँ होता है, ऐसे ही नहीं होती है मंजिल, कदमों में हौसलों का एक समंदर होता है। तैरती नैया में ही महफिलें सजती है और डूबती में भी तो माझी तन्हा होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे गीत अमाल मलिक और पलक मुचल की आवाज में। अब आइए सुनते हैं हम परियोजना प्रस्तुति, क्योंकि परियोजना प्रस्तुति बहुत ही बहुत ज़रूरी और हमारे लिए हमारे साथ सुनने को बेकरार हैं आप, आइए सुनते हैं।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: दोस्तों, आप परियोजना प्रस्तुति में आज हम सुनेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विषय में। जी हां, भारत सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार भारी सब्सिडी भी दे रही है। सरकार सोलर सिस्टम की क्षमता KW के आधार पर सीधे आपके बैंक खाते में सब्सिडी भेज रही है। 1 किलोवाट के लिए 30,000 की सब्सिडी और 2 किलोवाट के लिए 60,000 की सब्सिडी, 3 किलोवाट या अधिक तम के लिए 78,000 की सब्सिडी। अगर आपका मासिक बिजली खर्च 150 यूनिट तक है तो 1 किलोवाट का सिस्टम पर्याप्त है। यदि खर्च 150 से 300 यूनिट है तो 2 किलोवाट पर और 300 यूनिट से अधिक होने पर 3 किलोवाट या सब उससे बड़ा सिस्टम लगवाना चाहिए। वैसे हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली का बिल बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यदि आपका सोलर पैनल आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बनाता है तो आप उसे सरकारी ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। यदि आपके पास सोलर पैनल लगाने के पैसे नहीं है तो सरकारी बैंकों से बिना किसी गारंटी के बेहद कम ब्याज दर करीब 7% पर 2 लाख तक का लोन मिल सकता है। सोलर पैनल का एक बार लगने के बाद कम से कम 25 वर्षों तक ये चलेंगे। आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास अपना खुद का पक्का घर होना चाहिए जिसकी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह प्रति किलोवाट लगभग 100 वर्ग फुट हो। घर में एक वैध एक्टिव बिजली कनेक्शन होना चाहिए। परिवार की पूर्व में कोई सोलर सब्सिडी बकाया

0: नहीं होती है। आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाएं, अपने राज्य बिजली वितरण कंपनी का नाम और अपना बिजली उपभोक्ता नंबर दर्ज करें, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर लॉगिन करें और रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई करें। तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद सरकार द्वारा पंजीकृत होने पर ये काम करेगी और इसे आप पूरी तरह से आप इसे लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से सरकार की तरफ से मुफ्त बिजली योजना है।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: जी हाँ दोस्तों, आप परियोजना प्रस्तुति सुन रहे थे और सुन रहे थे मुफ्त सूर्य बिजली घर योजना। लेकिन अभी वक्त है 3:26 का। चलिए जाते जाते गीत बजाते हैं, फिर उसके बाद हम दिल्ली से उमंग कार्यक्रम से शुरू करेंगे। आइए सुनते हैं। ठीक है।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
1: नमस्कार श्रोताओ, और मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
0: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
0: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
0: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
1: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: जी
1: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
0: जी,
1: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
0: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है ना?
1: जी।
0: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
1: श्रोताओं आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
0: जी।
1: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
0: जी।
1: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
0: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
1: जी।
0: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
1: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
0: जी।
1: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
0: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
1: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
0: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
1: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
0: जी।
1: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
0: जी।
1: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
0: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
1: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
0: जी।
1: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
0: जी।

0: का हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
1: इसका संबंध खान पान से है।
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है
0: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: आशुतोष, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
0: पंडित बिरजू

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958। स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था। उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 वर्ष की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
2: प्रणाम पिताजी।
3: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
2: लेकिन क्या पिताजी?
3: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
2: जी पिताजी।

0: मेरे गुरु तो आप ही हैं, और मेरे चाचा शंभु महाराज और लच्छू महाराज।
1: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
0: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
1: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
0: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
1: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
0: जी पिताजी।
2: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
3: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं, और ख़ासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
5: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है, और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाइज अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो बहुत खील बताशा जेब में पड़ा है, और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
4: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
5: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊँगा पर मैं रियाज करूँगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था। अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा। तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया, और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो। अम्मा कह ले मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए, और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया, ही नहीं दिया ही। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक़्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
4: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक ख़ास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीज़ों को?
5: अरे उनको बड़े मज़े में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथ ही ता, ऐसे करके,

0: तो कहने के इसमें तो बहुत सारे तथ्य ही है, कैसे याद करूँ। तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? कहना हाँ खाते हैं। पूड़ी खाती हूँ? हाँ खाते हैं।
1: तो सब्जी पूड़ी, वाह वाह। तो सब्जी तीन मात्रा, पूड़ी दो मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह वाह वाह। सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
2: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए। उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
4: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
3: सत्रह जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
5: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
6: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
7: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
8: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
5: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
9: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
5: भगत सिंह।
10: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
11: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
10: निडर नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
12: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
13: कौन है?
14: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
13: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
14: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
13: अमृतसर? अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
14: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
13: ये इस शीशी में क्या है?
14: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
13: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
14: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तो देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
13: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
14: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
10: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
12: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
14: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
15: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
14: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के

0: तुम पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
1: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
2: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
3: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली से कार्यक्रम उमंग। दोस्तों वैसे तो हमारी हर बात पे एक बात है कि क्या कहे कि हम सभी तीन का तड़का कार्यक्रम सुन रहे हैं लेकिन उसमें काम हम उमंग और अनगिनत गीतों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों हर ख्वाब हमेशा मुकम्मल हो ये कहाँ होता है, लेकिन दोस्तों ये भी बात है कि समय भी कहाँ रुकता है। समय अपनी गतिविधियों के साथ बढ़ता ही जा रहा है और 3:58 हो चुके हैं। मेरे ख्याल से हमारे इस गीतों के सफर को अभी विराम करने की इजाजत चाहना होगा क्योंकि दोस्तों ये समय है ना, समय बहुत तेज गति से आता है और बहुत जल्दी जल्दी पंख लगा के उड़ जाता है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे यूं ही हर दिन 3 के कार्यक्रम में मिलते रहेंगे। आरजे रिंकू शायद आपसे हर दिन नहीं मिल पाएगी लेकिन हम आकाशवाणी के हर कार्यकर्ता आपके साथ आपके सम्मुख खड़े रहेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके दोस्त। दोस्तों जाते जाते एक शेर के साथ कही देती हूँ कि दोस्तों खुश होने के लिए कोई काम करेंगे तो शायद खुशी ना भी मिले लेकिन अगर खुश होकर कोई काम करेंगे तो आपको खुशी और सफलता जरूर मिलेगी। इसी आशा और आकांक्षा के साथ तीन कदर का कार्यक्रम से आरजे रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
7: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर।

0: जी हाँ, सलाम नमस्ते और बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, शाम की सुरीली हवा में आपका और हमारा मेल हो चुका है। आप सुन रहे हैं छायालोक और 107 एफएम रेनबो पर। इस वक्त मैं हूँ आरजे रिंकू और छायालोक में आज हम सुनेंगे प्यार भरे नगमे।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
2: प्यार भरे नगमे।
0: जी हाँ दोस्तों, प्यार भरे नगमे में वो 90 के दशक का इश्क, वो पहला इकरार याद आता है। भीगी आंखों में छुपा, वो छुपा छुपा कर देखना यार याद आता है। जब लगती थी इश्क की आग तो दवा सिर्फ उनका दीदार होती थी। आज हमारी इस प्यार भरे लम्हे में वही रूहानी प्यार याद आता है। तो चलिए इश्क की इस लगी को थोड़ा और गहरा करते हैं और सुनते हैं अभिजीत और पूर्णिमा की आवाज में फिल्म जुड़वा से ये गीत।

जी दोस्तों, ये जुड़वा फिल्म का गीत सुन रहे थे आप अभिजीत और पूर्णिमा के जुगलबंदी के साथ। वैसे तो संगीतकार अनु मलिक ने इस गाने में अभिजीत की जगह जो आवाज का इस्तेमाल किया था वो तो सलमान खान जी, जिनके जुड़वा किरदारों में जो टपोरी राजा के लिए उन्होंने किया था। वैसे दोस्तों, इस गाने में अभिजीत ने पारंपरिक रोमांटिक गायकी से हटकर जो मवाली टपोरी और मस्ती भरा अंदाज अपनाया, उसने इस गाने को हर शादी पार्टी और ऑटो रिक्शा की धुन बना दिया था। वैसे पूर्णिमा जो साथ दे रही थी जुगलबंदी में, इस गाने में अभिजीत के साथ फीमेल सिंगर की तीखी और चुलबुली आवाज में ऐसा जादू किया कि आज भी लोग इसके हुक स्टेप पर झूमने लगते हैं। वैसे दोस्तों, इस गीतों के साथ हम भी बरकरार है, लेकिन अभिजीत और केके की आवाज में सुनने के लिए ये गीत के लिए भी तैयार रही है। आइए सुनते हैं फिल्म स्टाइल से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, ऐसा टप टप टपोरी की आवाज अमित कुमार और आनंद चित्रगुप्ता की आवाज थी। वैसे फिल्म थी बागी और गीत के बोल लिखे थे समीर ने, संगीत से सजाया था आनंद मिलन ने। वैसे बात 1990s की चल रही है और अभिजीत के साथ अमित कुमार के साथ आशा भोसले की आवाज में आज सुनेंगे हम एक और गीत फिल्म रंगीला से।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज। उनकी आवाज में छुपा है वो जज्बात पुराना, सुनकर जिसे झूम उठता है आज भी ये जमाना। दोस्तों, भीगी आंखों से भी छलक पड़ता है दीवानेपन का ये नूर जब आशा जी गाती हैं कोई नगमा सुहाना। दोस्तों, वैसे तो आशा भोसले की क्या बात, वैसे 90s के गीतों की धमाकेदार एंट्री के साथ आशा जी की पुरानी आवाज ने जो छाप छोड़ी थी वो आज के सिंगर्स के लिए सच में सोचने वाली बात है कि एक जो हमेशा कम से कम उनकी उम्र उस समय 60 साल से तो ऊपर की होगी, लेकिन उन्होंने ऐसी आवाज में उस वक्त गाई कि लोग उस समय के जो यानी यंग सिंगर्स थे वो भी कान खड़े करके सुनने लगे होंगे। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और हेमा सिरदसाई के साथ चेतन की आवाज में एक और धमाकेदार गीत।

जी हाँ दोस्तों, प्यार भरे नगमे का सिलसिला यूं ही बरकरार रह रहा है क्योंकि अब 7:35 हो चुके हैं और इस भाग में मैं आरजे रिंकू आपको गीत सुनाए जाऊंगी, लेकिन इसके बाद 8 बजे हमारे साथ होंगे अमरनाथ जी। आरजे अमरनाथ आपके साथ होंगे और आप उनके साथ गीत गाएंगे। वैसे रिंकू की आवाज के साथ जो गीतों का मेल ताना वाना आप सुन रहे हैं, शायद आपको अच्छा लग रहा हो या फिर नहीं लग रहा हो, लेकिन मुझे यकीन है कि अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है और इंजॉय करते रहने में कुछ बुराई नहीं है। वैसे अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाज में अगला गाना आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म दिल लगी से ये गीत सुन रहे थे आप। और साल था उस समय 1990s का। वैसे दोस्तों, शुरुआत में जो चीजों को हम झुबा देते हैं, वैसे चाय की चुस्की हो या 107 FM रेनबो का साज हो, दिल में धड़कता हुआ कोई भी प्यारा सा राज हो, वो हमारे 107 FM रेनबो पे छायालोक के गीत प्यार भरे नगमों के साथ बरकरार रहता है। तो चलिए बिना देर किए हुए सुरीली आवाज को और भी ज्यादा जोर देते हैं और सुनते हैं आशा भोसले, सुखविंदर सिंह और सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, 2001 का ये गीत आशा भोसला जी ने जो कह डाया था इस फिल्म में, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप सोचिए, जिस उम्र में लोग आराम करते हैं, उस उम्र में आशा ताई ने अपनी आवाज में वो वेस्टर्न स्वैग, वो सिट क्विट टोन और वो कड़कती हुई एनर्जी फूंक दी, जिसे सुनकर नौजवानों के पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। सुखविंदर सिंह और सोनू निगम की बुलंद आवाजों के बीच भी आशा जी की वो लाइन, कमबख्त इश्क चीज ही ऐसी है, सीधे कान के रास्ते में दिल में उतर ही जाती है। उर्मिला मातोंडकर की स्क्रीन पर कातिलाना अदाय, बैकग्राउंड में आशा जी की ये आग लगाती आवाज, सच में कहर शब्द भी इसके सामने छोटा पड़ता है। दोस्तों, राम गोपाल वर्मा की ये फिल्म प्यार तूने क्या किया, इस फिल्म की हर शो, हर डिस्को, हर पार्टी, हर रेडियो स्टेशन की उस दौर में हर कह डाने वाले लोग बजाने वाले गीत बन गया था। दोस्तों, ऐसे ही शो की, ऐसे ही गीतों की 107 एफएम रेनबो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चुलबुले गीतों के साथ। आरजे रिंकू के साथ आप सुन रहे हैं 7:46 हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में, और अभी बहुत सारे गीतों का दौर बाकी है क्योंकि हमारा और भी सेगमेंट बाकी है। तो आइए सुनते हैं अलका याग्निक और शंकर महादेवन के साथ विनोद राठौड़ की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, वैसे तो गीत चाइना गेट का था, लेकिन हम बात कर रहे थे 90s के उन दिनों की, जिसपे हमने चढ़ चढ़ कर 2000 और फिर 2026 पार कर लिया। वैसे दोस्तों क्या कहने उन दिनों के, उन दिनों के साथ हमारा सफर भी तो अब धीरे धीरे करके खत्म ही हो रहा है। आज 7:52 हो चुके हैं। चलिए सुनाए देती हूँ एक और गीत, और इसी गीत के साथ रिंकू को, यानी कि रिंकू को इजाजत देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जरूरी है। और अमरनाथ भट्टाचार्य जी आएंगे अगले सेगमेंट में, तो चलिए ये गीत सुनाते हैं आपको सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाज में। थैंक यू, नमस्कार।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

ख्यालों के दूसरे भाग में आपके साथ आपका रेडियो वाला मैं अमर लेकर गीतों की डाली, और उम्मीद है कि ये गीत आपको जरूर पसंद आएंगे बिल्कुल।

मौसम प्रीत का हो या प्यार का, फिलहाल तो मौसम ने अपना भीगा हुआ रूप दिखा दिया है दोस्तों। छप छप पानी के बीच उछल उछल कर चलने का अंदाज हमने सीख लिया है सुनने वालों। जूते में लोहे का कवर चढ़ाकर चलने से कैसा हो अगर तैरने वाला जूता कोई आविष्कार कर दे तो फिर कैसा हो। हम जूते की दुकान में गए और हमने कहा कि भाई तैरने वाला जूता दिखाओ, और उन्होंने तैरने वाला जूता दिखाया। अब कितने देर ये डिपेंड करता है कीमत पर। सपोज कीजिए कि 1000 रुपये का एक जूता है जो कि 2 घंटा तक तैर सकता है, 1500 रुपये का जूता है जो 3 घंटे तक तैर सकता है, तो हम जिस एरिया में ज़्यादा जाते हैं वो एरिया कब तक वाटर लॉक्ड रहता है ये हमें पता नहीं, बट अगर पता हो तो उस हिसाब से हम जूते का चॉइस कर सकते हैं, है ना। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और अब हमारे साथ रहिए बने हुए अब से ठीक 9 बजे तक।

0: पूछ लो, मैं भी पूछता हूँ आपसे। पिछले साल की बात याद है आपको? रात के करीब 12 बजे से जो बारिश शुरुआत हुई, डेट याद है किसी को? बिल्कुल, डेट सबको याद होगा भाई। वो जो बारिश हुई थी, कोलकाता पूरी तरह से फ्लडेड हो गया था। और अगर आपको याद हो कि जो बेसमेंट्स में जो गाड़ियाँ पार्क की हुई थी, उन गाड़ियों की क्या हालत हुई थी, और एक एक वर्कशॉप में तीन तीन महीने, चार चार महीने तक लाइन, गाड़ियों का तांता लगा रहा वर्कशॉप्स में कि गाड़ियों को ठीक करने के लिए। बट कुछ गाड़ियां ठीक हुई, कुछ गाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो गई। डेट याद है 24 सितंबर, जहां तक मेरी याददाश्त की बात है, 24 सितंबर 2025 की रात। जी हाँ, चूंकि लोग सो रहे थे और रात के 12 बजे के करीब से बारिश शुरू हुई। धीरे धीरे वो बारिश इतनी तेज़ हो गई कि सुबह उठने के बाद जब पता चला तो फिर बस टीवी पर हमने देखा कि शहर की क्या स्थिति है। कोई बात नहीं, बारिश को लेकर काफ़ी गाने हुए हैं, बादलों को लेकर काफ़ी गाने हुए हैं। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, पर वही बादल जब आते हैं और बारिश होती है तो लोग रब्बा रब्बा करने लगते हैं।
1: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम।
0: 107 ARFM रेनबो, दिल से दिल तक, छाए लोग, दूसरे भाग में मैं आपके साथ, मैं आपका रेडियो वाला, मैं अमर।
2: कुछ भी नहीं,
1: गरन में वो नहीं।
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब,

किसी के आने से शाम डूबती है क्या? मुझे तो पता था कि पानी में ही डूबती है, शाम हो या सुबह हो या दोपहर हो, पर पता नहीं ये गीतकार संगीतकार हमारे जो हैं वो क्या सोचते होंगे। फिलहाल इस गीत को आपने सुना फिल्म दिल जले से कुमार सानू की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। जी हाँ, तो मैं एक बार जावेद साहब से पूछना चाहूँगा कि शाम डूबती है किसी के आने से या फिर बारिश की पानी से। पिछले साल की बात आपको तो याद है, जैसा कि मैंने कहा कि 24 सितंबर जहाँ तक मेरी याददाश्त का सवाल है, बारिश का मौसम तो वैसे बहुत ही खुशनुमा होता है सुनने वालों पर, जब यह अपने अति पर उतर आता है ना, एक्सट्रीम जब हो जाता है तो हमें नानी दादी सब याद दिला देती है ना। पर यह मौसम ज़रूरी भी है, हमारे इतने बड़े देश में खेती बारिश के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करती है। कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि बारिश भाई उतना ही बरसो जितने की ज़रूरत हो, ज़्यादा मत बरसो प्लीज़।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

चलो भाई चलते हैं तो चलते जाओ बिल्कुल, और बारिश की रम झम झम झमा झम बारिश देते जाओ, पर रिमझिम देखो बरस रही है रात, रात को बरसने दो पर सावधान रहो, यानी पानी घर में न घुस जाए। जी हाँ, बारिश के मौसम में थोड़ी सावधानी की भी ज़रूरत है, स्पेशली उनके लिए जो रास्ते में चलते हैं, टू व्हीलर या साइकिल चलाते हों उनके लिए, क्योंकि कल भी मैंने देखा एक जो वो था ना, वो क्या कहते हैं जो हमारे घर में होम डिलीवरीज देता है, वो साइकिल से आ रहा था बेचारा, और गड़ियाहाट के पास वो ट्राम की लाइन पर उसकी साइकिल स्लिप हो गई और बेचारा धम से गिरा, साथ में सामान भी था, सारा सामान गिर गया। किसी एक राह चलते लोग इंसान ने उसकी सहायता के लिए वो आगे आए और उन्होंने मिलकर उसे आगे उठाया। सच में जो इस तरह के लोग हैं जिन्हें रोज़ निकलना पड़ता है उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है सुनने वालों, है ना।

छह लोग के दूसरे भाग में अब बारी है आपसे अलविदा कहने का, पर वादा ये रहा कि मिलेंगे आपसे बहुत बहुत जल्द यूं ही। जी हाँ, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप खुश रहिए, खुश रखिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ, और दुआओं में उठे अगर हाथ कभी, तो एक छोटी सी दुआ मेरे लिए भी मांग लीजिएगा। आपके साथ अब तक था आपका रेडियो वाला मैं अमर।

अगर प्यार हो जाए छबिर साउंड ट्रैक थेके सोनू निगमेर कंठे शुनछिलाम ई गानटी। एर परेर गानटीओ ई एकी छबि थेके शिल्पी अलका याग्निक। आर ई गानटी शुनते शुनते आमरा बिदाय नेब आपके लिए এই আসর থেকে।